अरे यहाँ पूरा विरोधी विरोधी देखा आप, यहाँ पहले 10 रुपया था हमारा, कुछ नहीं। पूजा करते करते जो पूजा करते गया बढ़ते गया, पूजा करते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, बहुत बढ़ गया अभी, ठीक है। इसलिए पूजा करेगा बिल्कुल मन से इच्छा से पूजा करेगा तो ये आदमी भी बड़े आदमी होगा, संपत्ति बढ़ेगा, सुख समझिए।